बड़ नाले ये तीखेरा दुख पर बिदे न पड़ नाले मोमा स्वर्गे मुनु भयो म 5 वर्ष को हुदा बालखमा पढ़ना पाइन 7.5 ले छुदा।